सिंह जी महाराज, केवल कर्म भरम से चीन थानू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, जगत नू दिखाई दे रहे असि धार्मिक कर्म कर रहे हैं, ये भरम है, कर्म नहीं, धार्मिक कर्म नहीं है। नहीं तो हुण तक ते पहुंच गए होंगे धर्म तक, धर्म आनंद है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे निर्वैर तक, धर्म निर्वैर है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे महान दया ते परम प्रेम तक, धर्म ते आखिर यही कुछ है, हुण तक ते पहुंच गए होंगे समाधि तक, रस तक, धर्म ते यही कुछ है, कीता ते बहुत कुछ है, पहुंचे किधरे भी नहीं। तो कबीर कहिंदे कोई विधि नहीं। इस दे ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा कि कबीर ने इतनी जुर्रत नाल ऐसा क्यों कह दिता है। 36 प्रकार दा भोजन होवे, थाल दे च परोसे होया, किसे दे अगों रख देईए, अगला ए कह देवे खाण दा ढंग भी दसो, किवें खाईए। एक गल स्पष्ट हो गई, इहनूं भुख नहीं लगी। भुखा बंदा नहीं पुछदा, भुख उसनूं मजबूर कर देंदी, खा मुंह च पा। और किस ढंग नाल खाना है? कोई बुरकियां अखां च पाणियां ने, कन्नां दे च पाणियां ने, मुंह च ही पाणी। जो कुछ सामने पे मुंह च पाणा है, कोई अख दे च थोड़ी पाणा है, कन्न दे च थोड़ी पाणा है। पर जे भुख ना लगी होए तो मनुख ऐसा कह सकदा है? भरिया होया ठंडा पानी दा गिलास या शरबत अगों रख देईए, अगला कहे पीण दा ढंग दसो, गल स्पष्ट हो गई, प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन दा ढंग पुछदे ने किवें नाम जपिए, किवें नाम जपिए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवां, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है, ये कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते ने, और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, दस दस वी वी साल तक भी इको ही प्रश्न पुछदे देखे किवें जपिए, और सैकड़िया को पुछदे देखे, तो गल स्पष्ट होगी भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरुद्वारे आके, बस उसकी रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसे रंग चाहुंदा है, वो जपना किसे सरूर चाहुंदा है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहेगुरु आखण दे च उसनू रस आ रहा है, उहदा ध्यान टिक गया है, उहदी सुरत शब्द दे नेड़े है, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करा, जो जबान बोलदी है इहनू कहिंदे ने बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ये बोल कंठ दे चाहुंदे ने, इहनू कहिंदे ने मधमा, और इस तो पहले हिरदे चाहुंदे ने, इहनू कहिंदे ने पसंती, इस तो पहले नाभी दे चाहुंदे ने, इहनू कहिंदे ने परा। ते पता है नाभी दा एक नाम है समुचे भारत दे च, बिल्कुल सही नाम है धुनी। नाफ नू की कहिंदे ने धुनी, ते धुनी दा अर्थ की है आवाज, भई ये धुनी है। एक कोई देश है हिंदुस्तान जिथे नाभी नू धुनी कहिंदे ने, और किधरे भी नहीं। और ये गल माण नाल आखी जा सकदी है, धर्म दियां जिन्ना गहराइयां नू हिंदुस्तान दे संतां ने छोया किधरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब उपर बचकानियां गल्लां मिलणगियां थानू, गुस्ताखी माफ, इस छोटी जी जबान नाल मैं वड्डी गल कर रहा, बाइबल दे च कुरान दे च बिल्कुल बचकानियां गल्लां मिलणगियां। कुरान शरीफ पढ़दियां पढ़दियां मैं तो एक दिन हैरान हो गया, जद कुरबानी दे पेज आया, भी बैल लंगड़ा नहीं होना चाहिए जिन्हों जबा करना कुरबानी देनी, बकरा दागी नहीं होना चाहिए, उठकाना नहीं होना चाहिए, औखे ना होना। मैं तो कई दफा हैरान हो गया, मैं भी पढ़ के रहा, धार्मिक ग्रंथ और काफी लंबी चौड़ी कुर्बानी ते विचारधारा, 500 सफे बाइबल दे च भी ऐसे ने, तुसी परिवार दे च पढ़ भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, इतने थल्ले ने सभ्यता तो। उन्होंने सामने पुराणक साखियां बिल्कुल

나는 그걸 원칭지 말아이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, होर जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र का जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उस को समय है। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार, ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला

कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसी तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नुशनान कराया गया, फुला दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रखोता है। सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीर रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंज ककारा नाल। कक्का के

जो अपने मन नाल संघर्ष करनु राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करनु अपने आप नु समझा लवे मना लवे दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्षमयी बिरतियां ते मनुख दे अंदर है कियां ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नु तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है, और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण दे चाया है, ये संघर्ष मनुख कल्या ही करदा है। इस विच दूजा तीजा चौथा पंजवा सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनदा है। तनहाई चाहीदी है, एकांत चाहीदा है, रहे एकांत एको मन वसया आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है इनू दूजे तीजे दी लोड़ होंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है संसार नाल संघर्ष करदा है, ये अपना संगठन बना लैंदा है, अपनी जमात बना लैंदा है, ग्रोह बना लैंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहिंदा हुंना, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकदा है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। और कोई देश मुकम्मल तौर ते समाजिक हो सकदा है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकदा, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकदी। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आउंदा। ऐसा देखण दे चाया है, बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर विच परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वकत दे अवतारी पुरुष द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे ओ मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट, गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे इतिहास दे च ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है, पिता धनवान है, पुत्र धनवान है, सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहिंदे ने रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते आज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जांदा है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होवेगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कहे परम आनंद पिता दी झोली दे च भी जो है पै जाएगा। तो ए निजी है, और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं आउंदा, ना पत्नी सहायक बनदी है, ना भरा सहायक बनदा है, ना पुत्र सहायक बनदे, बन ही नहीं सकदे। अंदर दी दुनिया, अंदर दी दुनिया विच ए सारा

दू कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। कह लगे आज जे गुरु अर्जन देवदासी दीदे मना लगे ना ए पदत ते मत चूकै रे मन। ए दे अर्थ ने इस सिद्धांत तो किते थिड़क ना जाई केड़े तो। कह लगे ए पदत ते मत चूकै रे मन भेद विभेद ना जान पियो किते गुरु अर्जन देव ते रब विच अंतर ना समझ लई। ए पद ते मत चूकै रे मन भेद विभेद ना जान पियो पर तच हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। आओ प्यारियो उस गुरु अर्जन देव ने अपने आप नू कुर्बान करके सिखी विच एक नवी रूह फूक दिती। प्यारियो नवा रंग लियांदा गुरु अर्जन देव कृपा करन सानू भी अपने चरण शरण अपने चरणा विच टिका बख्शन नाम दी दात बख्श के दाता निवाज दे। इनिया को बेनतियां जी प्रवान करनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

एक गुण नाही अमृत छाद बिखर बिख खाय माया मोह परम पर फूले सुत दाराशों प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पात कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता।

पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत, मरता मरता जग मुआ कबीर, मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। बेशुमार

अमृत गुरबाणी अनुसार जेड़ी वस्तु अपने मूल तो विछड़ जाए, अपने असले तो, अपने धुरे तो, अपने मरकज तो दूर चली जाए, उस वस्तु दे अंदर खिंडा पैदा हुंदा है। उस दे अंदर दी निर्मलता ही, उस दे अंदर दा सुहापन, उस दे अंदर दी सुंदरता उदो ही खत्म होनी शुरू हो जांदी है जदो ओ अपने धुरे तो वक हो जांदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच दातार जी ने चार महान दुखां दा जिक्र कीता है। असल विचो चार दुखां विच कृपालू दातार जी ने सब तो वड्डा जिहड़ा दुख है ओह विछोड़े दा मनिया है। दूसरा दुख गुरु नानक साहिब जी दे शब्दां अनुसार मन अंदर उठी कोई तृष्णा, मन अंदर उठी कोई भुख। तीसरा दुख मौत दा, ते चौथा दुख इस पांच भूतक शरीर विच रहिंदिया होया तन नूं कोई रोग लग जाए। तन गुरु नानक साहिब जी ने इन्हां चार दुखां दा जिक्र करदिआं अमृत बाणी विच बख्शिश कीती। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। सब तो पहला दुख जो है वह विछोड़े दा है। जदों अपना कोई सज्जन मित्र विछड़ जाए ओदा विछोड़ा भी दुख पैदा करदा है। शरीरक तौर ते विछोड़ा अंदर नूं खला के रख जांदा है, ते जदों कोई अपने अंदरों विछड़ जाए ते सच जाणो उसका अंदर किन्ना कु बेहाल होवेगा। हजूर ने कहा दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दूजा दुख है भुख दा। ते इत्थे भुख दा अर्थ केवल तन दी भुख नहीं, मन दे अंदर तृष्णा दी बलदे होए भांबड़। अंदर दी भुख कदी शांत ना होनी, तृष्णा भी तां एक बहुत वड्डा दुख है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, ते तीजा दुख है एक दुख सख्त वार जमदूत, मौत दा दुख है। एक दुख रोग लगे तन ताए, आ चौथा दुख शरीर नू को लग जाना। कहन लगे वैद ना भोलै दारू लाए। हे भोले वैद, तू तां केवल तन दे रोग जानने, तन दे रोग तो पहला तीन अंदर दे रोग ने, अंदर दा विछोड़ा, अंदर दी तृष्णा, मौत दा भय। सच जानी ए तीन रोगां दी निवृत्ति गुरु तो बिना कोई नहीं करा सकता। अज जिन्हां दी याद विच आपां जुड़े बैठे हां उहनां नूं पहला दुख अपने गुरु दे चरणां दे विछोड़े दा सी, अपने प्यारे दे चरणां तो विछड़ जाणा। ते अर्ज मैं कर रहा कोई भी चीज अपने धुरे तो, अपने मरकज तो विछड़ जाए ते कुदरती तौर ते विछोड़ा उहदे अंदर कोई ना कोई तब्दीली जरूर पैदा करदा। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों कुछ प्रमाण आपां वाचने ने जिहदे विच हजूर ने इशारा कीता है कि विछोड़ा हमेशा दुख नूं जन्म दिंदा है। गुरु नानक साहिब जी का एक अमृत बचन है, सलोक 12 ते वधीक विच असीं पढ़ने। दातार जी ने उदाहरण आम संसारक तौर ते समझाण वास्ते लईआं, ते उदाहरण का मतलब यह नहीं हुंदा कि केवल अपनी विद्वता का जोर दिखाना। उदाहरण का मतलब यह नहीं कि बहुत सारिया विचारां इकट्ठियां कर लेनियां। कोई भी उदाहरण एग्जाम्पल दिती जांदी है उहदा भाव है कि उस बार दृष्ट मान चीज नूं देख के अपने अंदर दे जीवन नूं कमा लै। हजूर गुरु नानक साहिब जी ने विछोड़े दे दुख नूं बयान करदिआं होइआं अमृत बाणी विच इक बचन कहा है, कृपालू सतगुरु गुरु नानक साहिब बख्शिश करदे ने कि पाणी दा इक सरोवर है, जिस सरोवर दा निर्मल नीर हर लंघण वाले बंदे नूं अपने वल आकर्षित कर रहा है। ते उसे पानी दे अंदर कमल दे फुल उग पए, ते जदों कमल दे फुलां नूं खेड़ा मिलिया ओ पूर्ण तौर ते खेड़ा विच आए, ते फुलां दी महक नूं देख के भवरे उहनां दी परिक्रमा करन वास्ते पहुंच गए। भवरे ने फुल दी परिक्रमा कीती, ओहदे रस नूं स्वाद नूं ओहदी सुगंधी नूं माणिया, ते सुगंधी नूं माण के वापस चला गया। हजूर कहिंदे ने सरोवर दा पानी निर्मल होवे, फुल खिड़े होण, ते कुदरती तौर ते ओ सरोवर बंदे नूं अपने वल आकर्षित करदा है, अपने वल ओ खिचदा है। चित कीता इस सरोवर दे किनारे कुछ समा टिक जाइए, इस दी निर्मलताई दा, इस दे खिड़े हुए फुलां दा, फुलां विचों उठी कोई महक दा आपां आनंद माण सकीए। धन गुरु नानक साहिब बख्शिश करदे ने
ਨਿਰਮਲਤਾ।

0: कि अपने नेत्र खोल, तू कर्म खंड का वासी है ते कर्म खंड विच रहंदे ने, तिथे जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर, जोधे सूर में कर्म खंड विच ने, देख तू सच खंड विच पैर पा मेरे लाल, अगों खत जोड़ के शब्द सन दातार, सच खंड पुछा सच खंड दे दरवाजे बंद, कहन लगे दरवाजे ता सच खंड दे खुले ने, पर उत्ते लिखिया है सामने एक फटी लगी है जिदे ते लिखिया तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, दरवाजे ता बंद नहीं, पर कृपा कर इस तख्ती नू तोड़ दे, इस कागज नू पाड़ दे, हजूर कृपालू दे चरणा विच जुड़ के उस वेले एक बेनती कह रहा सी कि मेरे दाता जी राख लिखो खम ते बिगड़ी सानू बचा लै, उस वेले शब्द कह रहे सन रामैया खौ बारक तेरा काहे ना खंडश अवगुण मेरा, उदो शब्द कह रहे सन के कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो वह स्वामी मानस की गत एही, तुसी कृपा करो सानू बचा लो। हजूर फिर कहिंदे ने मां सिंह होर कुछ मंग, कहन लगा कुछ नहीं बस टुटी हुई गंढ लो। अखीर दी जोधड़ी सी सच्चे बादशाह साडी टुटी गंढ लै, मेरे साहब ने तीन शब्द कह मां सिंह कागज बाहर कढ़िया करके पुरजा पुरजा हवा विच उड़ा के कह लगे मां सिंह टुटी सो नखुटी, दूजा शब्द क्या टुटी सो नखुटी, तीजा शब्द फिर क्या के टुटी सो नखुटी, अजे भाई मां सिंह शुक्र वास्ते शब्द ही वरदे पैसन सच्चे पातशाह, तेरे चरना तो बलिहार जिन्हें परत के फिर सीने नाल सानू लाया, ते कृपालू ने कुट के सीने नाल ला के क्या मां सिंह मेरे लाल तन सिखी, दूजा शब्द फिर क्या तन सिखी, तीजी वरी क्या तन सिखी, एको जा सीने न लाया भाई मां सिंह दा सवास ही गुरु के सीने विच चला गया। प्यारियो भाई मां सिंह जी दा अंतला सवास गुरु गोबिंद सिंह जी दी गोद विच आया, हजूर ने गोदी विच पै होए दे मस्तक नू चुम्मिया सीने न लाया। एथे मैं एक अर्ज करना हुना वाह गुरु के लाल पुत्रां नू अंतला समा ओ नसीब नहीं होया। प्यारियो पांच घर दे जी एक हफ्ते भी चले गए, 22 दिसंबर ते 27 दिसंबर कितने कु दिन बांदे ने, दो वड्डे साहिबजादे दो छोटे लाल ते माता गुजरी जी, पंजां विचों किसे नू ना अपने हत्थी इशनान कराया, ना अपने हत्थी चिखा चुनिया, ना अपने हत्थी लंबू लाया, खबर ही मिलिया के गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे लाल शहीद हो गए, पर प्यारियो कैसे भागां वाले ने खदराने दी ढाब ते डिगे हुए गुरु के लाल शहीद, जिन्हां नू चौके भी सीने न लाया, अपने हत्थी खफन भी पाए, ते केवल ए नहीं जदो चिखा चिणी ते उस चिखा नू लांबू भी मेरे कलगी वाले ने लाए। ओ मुकत ने इन्नी देर नू माई भागो ते कोल गए, सहकदी पई सी ते शब्द इन्ने अखीर ते कहे सच्चे पातशाह बख्श दई भुलिया पुत्रां नू, बख्श दई घरों दूर गया पुत्रां नू, बख्श दई तेरे जेड़े बच्चे चले गए। हजूर ने कहा नहीं कले बख्शे नहीं ए मुक्त हो गए। असल विच उदों बीबी भागो दे शब्द नाल कहा कले बख्शे नहीं ए मुक्त हो गए ने, सदा लई मुक्त हो गए ने, ते इस थां ते अस्थान बन गया मुक्त सर, ते अज भी जदो सिख उते जाके मथा टेकदा ते बेनती करदा टुटियां गंढन वालिया कृपा कर साडी टुटी गंढ। प्यारियो केवल असी मुक्त सर दी गल करने हां, मैं इत्थे एक अर्ज करनी चाहना हां, हो सकदा कईआं नूं पाए ना, उन्हां ने तां कागज ते लिख के दिता ते अखीर ते सीने ते फट खा खा के अपने खून नाल धो के रख दिता, वो कागज ही खून नाल धो दिता, ते जेड़ा अज अपने मुंह ते लिख के तुरदा है होवे कहाए सिख ते केस कतल करके कह मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख, प्यारिया उन्हां ते कागज ते लिख के दिता तू तां मुंह ते लिख के चल पे कि तू मेरा गुरु नहीं ते मैं तेरा सिख, केसां दी बेदबी करदे आ। मेरी बेनती है केवल इस करके नहीं तुसी मैनू बहुत चंगा कहो, मैं तुहानू मिठियां गल्लां सुना जा, आखर इतिहास तवारीख जिंदगी कमाण वास्ते है, जदों मां भैणे बीबीए तू शीशे सामने खलो के केसां दी बेदबी करनी है, असल विच गुरु गोबिंद सिंह नू लिख के देनी पई है मैं तेरी धी नहीं ते तू मेरा गुरु, मैं तेरी बच्ची नहीं तू मेरा बाप नहीं। जदो तेन रब ने इना धन पदार्थ दिता, शाम नू दारू दी बोतल खोल के डका डक करके दारू पीना, सच जानी तू रोज लिख के देना कि गुरु गोबिंद सिंह तू मेरा गुरु नहीं ते मैं तेरा सिख नहीं। अज जुड़ गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच, तेनू सीने विच तीर खान लई नहीं कहिंदे, तेनू पुरजा पुरजा कट के मरन लई नहीं कहिंदे, सिर्फ तू चरण पकड़ के कह दे दाता उन्हां दी तां कुछ महीने टुटी ते कुछ दिनां विच गंढी गई, मैं तां करोड़ा जन्मां दा टुटिया होया, मेरी टुटी गंढ लै, मैनू विछड़े नू अपने चरणा विच मिला लै। मैं शुरुआत कीती सी विछोड़ा सब तो वड्डा दुख है, रब करे कि किसे दा गुरु तो विछोड़ा ना पै जाए। जे विछड़िया है इस जन्म विच आ जा, चरण पकड़ लै बख्शिया जाएगा, ते जे ना मन्यो फिर गुरु अमरदास दी पौड़ी चेते रखी, जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर था कोई, पुछो बिबेकियां जाए अनेक जूनी परम आवे, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। ये केवल गाउण लई नहीं, ये समझन वास्ते सी, टुटी गंढाण वास्ते सी। जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर था कोई, पुछो बिबेकियां जाए अनेक जूनी परम आवे, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। फिर किते टुटी होवे ते कहिंदे ने फिर मुक्त पाए लाग चरनी, ते गुरु ए नहीं कहिंदा जा पा जा मेरे घरों, कहिंदे ने आ पुत्र जे आ गया फिर मुक्त पाए लाग चरनी। सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। प्यारियो आओ, जे भाई मां सिंह दे खून नू प्यार कर दियो, जे टुटी गंढन वाले वीरां नू प्यार कर दियो, ते एक तां अपने अंदरों जुड़न दा यतन करिए, बाहरों भी जुड़िए बाणी करके, अंदरों जुड़िए बाणी करके। हुण असीं प्रश्न करने आ, बच्चे साडे केश क्यों, कृपाण क्यों, कड़ा क्यों, कशहरा क्यों? असीं यतन करने आ कि उहनां नू समझाने आ, उदाहरणां दे के। मैं सिर्फ दो चार मिनट तुहाडे लैणे ने, केस इस करके, कंघा इस करके। प्रोफेसर पूरन सिंह अलबेला कवि, भगत पूरन सिंह नहीं, प्रोफेसर पूरन सिंह, उन्हूं किसे ही पुछया कृपाण पाई केस रखे इन्हां दे अर्थ की, वह कहन लगे सुहागण तुरी जांदी है, हाथ विच चूड़ा पाया है, केसां विच मांग विच संदूर पिया है, उन्हूं रोक के पुछ लै संदूर दे अर्थ की। सुहागण ने मांग विच संदूर पाया, तू पुछे अर्थ की? एदे अर्थ इको ने, एदे सिर दा साई एदे सिर ते खलोता है, मेरे केस ते ककार, कहिंदे ने मेरा गुरु गोबिंद सिंह मेरे सिर ते खलोता, मैं खसम वाला हां। संदूर केवल अर्थ अर्थ करदा है कि मेरे सिर ते मेरा खसम है। आओ गुरु के प्यारियो, तन गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणा नाल जुड़िए, ते अंदरों भी जुड़िए। अज देखो क्यों कौम दी त्रासदी है, बाहरों प्रतीत हुंदे ने जुड़े ने, अंदरों काम ते क्रोध ने थोथिया कीता है। बाबे कबीर ने एक बचन कहा, मैं संपूर्णता इहदे ते करना, कहन लगे सौण दा महीना आया, अंब दी टाणी नूं फल लगे, कुछ फल टाणी नूं चमड़ी करके लगे, छिलके करके लगे, पर अंदरों उदन टुट गए जिदन तेज हवा चली सी, पर लगे टाणी ना रहे। कुछ ऐसे सन जेड़े टाणी नाल भी जुड़े, बाहरों भी छिलके करके जुड़े ते अंदरों भी जुड़े, इको टाणी नूं दो फल लगे, ते जिदन माली इन्हां नूं तोड़ के लिजाण आया, पक्कियां होयां नूं तां टोकरी विच पा के लै गया, ते जेड़े अंदरों टुटे सन बाहरों जुड़े दिसदे सन, उन्हां दे रंग काले पत्थर दी तरह कठोर, पुछ लिया तू ए क्यों नहीं तोड़दा, जुड़े तां ए भी ने, कह लगे ए छिलके करके जुड़े ने, अंदरों तां उदन ही टुट गए सन जिदन तेज हनेरी चली सी। प्यारियो आओ टुटी गंढाइए, बाहरों भी जुड़िए बाणी करके, अंदरों जुड़िए सुरत करके। जे अंदरों सुरत करके जुड़ गयो ते सच जानी कदी टुटेगा नहीं, ते जे ना टुटो फिर बाबा जी कहिंदे ने कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम के जो बीच न खाही कांब। तन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू मेर करे, असी उन्हां मुक्त सर दे शहीदां दी याद नूं हिरदे विच समो के गुरु का अदब कर सकीए। इनियां कु बेनतियां प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर ਹੈ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸ਼ੀ ਪੀ ਸੱਚ

सार न जाना तेरे सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो भिखम नदी जाए तरनी साध संगत कै अंचल लावो भिखम नदी जाहे तरनी। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों आप जी वडभागी हो जो हफ्तावारी हजूर दे पावन पवित्र चरणां विशेष दीवान सजदे ने उस दीवान दी हाजरी भर रहे आप जी ने इलाही गुरबाणी दा कीर्तन सुरवण कीता ते उस तो उपरांत गुरु सवारियां पासों भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी होरां पासों अमृत दे संबंधी जो एक हकीकत है जो गुरसिक्खी दे अंदर गुरमत दे अंदर एक अटल सच्चाई है कि सतगुरु दे चरणां विचों अमृत दी दात लै के आपां उस नाम अमृत दे नाल जुड़ना है जिस दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाणी ने कीता है। आपने बड़े प्यार नाल उन्हां पासों ये वचन सरवण कीते ने साध संगत जिवें पिछले कुछ हफ्तियां तों आपां ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दे पावन पवित्र जीवन और हजूर जी दे इस जीवन दे विचों चमकौर गढ़ी दे बरतांत नूं माछीवाड़े दे कौतक नूं हजूर दी कृपा नाल आपां विचार चुके हां ते 27 दसंबर नूं ही छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिवस सी जिस नूं आपां साका सरहंद वी कहिंदे हां ओ बतीत होया है जिवें दास ने अर्ज कीती सी कि हजूर दे इन्हां सपुत्रां दी करनी इन्हां बाबियां दी करनी दी आपां विचार करनी पर मैं अर्ज पहला भी कर दिया कि कुछ दिनों तो नरोल इतिहासक विचार चल रही है इहदा कारण सी कि उन्हां बाबियां दीआं कहानियां उन्हां महान पुरशां दी जीवनी नूं आपां विचार लईए किते उन्हां दी जीवनी दी विचार करदिआं किणका मात्र सानूं वी लाग लग जाए अंदरों किणका मात्र किते गुरदेव दी रहमत मिल जाए ते जिहड़े लोक अपने बजुर्गां दा जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं भुला दिंदियां ने ते ओह महान शहीद जिहड़े 5 ते 7 साल दी उमर अंदर ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जदों माछीवाड़े तो अगे नूं निकले ने, ते उधर सिख विद्वाना ने जो पुरातन साड़ी ए इतिहास दी लीक चली आ रही है कि माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी नाल ने, ते माता गुजरी जी एक घोड़े ते असवार सन। ते सिख इतिहासकार लिखदे ने जदों सरसा नूं पार कीता माता गुजरी जी ने, ते छोटा साहबजादा छोटा पोता बाबा फतेह सिंह माता जी ने अपनी गोद विच घोड़े दे अगे बिठाया होया, अपने अगे बिठाया, ते छोटा पोतरा अगे वे, वड्डा पोतरा बाबा जोरावर सिंह जेड़े ने ओ दादी मां दे पिछे बैठे हुए। सरसा नदी नूं पार कीता है ते उस माता गुजरी दा हिरदा कदी तकने आ। देखो जिसने पहला पति दी रज के सेवा कीती बाबा बकाला साहब जी दी धरती ते, ते जदो 9 साल दा पुत्तर होया गुरु गोबिंद राय, उदो अपने नेत्रां नाल तकिया अपने पति नूं आनंदपुर तो जांदियां गुरु तेग बहादुर जी नूं, ते उसे माता ने अपने नेत्रां नाल जदो अपने पति गुरदेव दा शीश आया उसनूं भी अपने नेत्रां नाल तकिया ते नमस्कार कीती है। उसे माता ने कदी आनंदपुर दे ओ दिन भी तके ने जदो हजारां दी तादाद अंदर आनंदपुर साहिब दी धरती ते सिख संगता नमस्कारां करदियां ने, जदो आनंदपुर दी धरती ते माता गुजरी जी दे चरण परसदियां ने संगतां, ते अज ओ मां ओ भी दिन तक दी पई है कि ओदा परिवार अज सारा खेरू खेरू हो चुका है। मैं सरसा नदी तो आरंभ करना, अज परिवार खेरू खेरू है, वड्डे साहबजादे वड्डे पोतरे ते पुत्र जेड़ा ओ एक पासे ने, जेड़े नूहां ने ओ एक पासे ने, ते माता गुजरी आप छोटे साहबजादियां अपने आप पोतियां नूं लै के ए एक पासे पई जांदी है। ते सिख इतिहास मुताबक इन्हें माता जीतो जी दियां निशानियां नूं सांभ के रखिया होए, ते माता जीतो जी ओ जेड़े आनंदपुर साहब दी धरती ते अकाल चलाना कर चुके, कहिंदे ने उस माता जीतो जी दियां ए दो निशानियां ने, ए पुत्र दी निशानी है। जदों सरसा नदी नूं पार कीता है जंगल बेलियां विचों निकले ने, ते विद्वान कहिंदे ने पहली रात इन्हां ने कुम्मे माशकी दी झोंपड़ी विच बतीत की।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर